नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः।

0: पकड़े दुख मिटे ते तराम नाम पकड़े दुख मिटे ते तराम नाम
1: पकड़े दुख मिटे ते तराम
0: नाम भव समुद्र सुख जनाव ते तराम नाम
1: भव समुद्र सुख
0: शांति सुख निदान दिव्य राम
1: नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
0: भक्त जन जीवन घन एक राम नाम
1: भक्त जन जीवन घन एक राम नाम
0: भक्त जन जीवन घन एक राम नाम
1: भक्त जन
0: राम राम राम राम राम राम राम राम।

0: पकटे दुख मिटे के तराम नाम पकटे दुख मिटे के तराम नाम अव समुद्र सुख जनाव के तराम नाम
1: अव समुद्र सुख जनाव के तराम
0: नाम परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
1: परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम
0: भक्त जन जीवन धन के तराम नाम
1: भक्त जन
0: जीवन धन के तराम नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम